बिहीन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz। समय को ख्याल राखौं। 6 बज्यो।

0: दिदी को आवाज परिवर्तन को संवाहक रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz।
1: सीता ए सीता
2: हजुर
1: रेडियो खोल त खबर चौतारी आउने बेला भयो।
2: ल ल खोलिहाले।

को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले जीऊ।